0: मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही है, महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।

सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मोहम्मद रफी की आवाज, राजेंद्र किशन का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में फिल्म गोपी से। और इसी गीत के साथ शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुहानी सुबह, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता के FM गोल्ड चैनल पर। कार्यक्रम में अगली आवाज एक बार फिर रफी साहब की फिल्म बैजू बावरा से, और मूड बिल्कुल यही वाला सेट रहेगा, ईश्वर को समर्पित एक और गीत। फिल्म बैजू बावरा के लिए इस गीत के बोल लिखे हैं शकील पदायूनी ने और संगीत है नौशाद का।

बादलों की दीवानगी बिल्कुल उसी तरह छाई हुई है जैसे सावन में छाई रहती है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे।

तापमान 27.1 यानी कि सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहा। उच्च आर्द्रता 97% और निम्न आर्द्रता 88% रही। वर्षा 9.6 मिलीमीटर रही। कार्यक्रम सुहानी सुबह, मैं आपके साथ पूजा, और कार्यक्रम में अगली आवाज रफी साहब की, शैलेंद्र का लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से।

कार्यक्रम सुहानी सुबह। आज का दिन यानी कि 31 जुलाई का दिन, आज के दिन को मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस के रूप में। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने वाले और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने या घायल होने वाले वन रक्षकों को सम्मान देने के लिए इस दिन को हर साल मनाया जाता है। साथ ही साथ आज ही के दिन मनाया जाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रशंसा दिवस। प्रशंसा किसे नहीं पसंद, हर कोई प्रशंसा प्रिय होता है। प्रशंसा एक तरह से हम कह सकते हैं बेहतरी की खुराक है। लेकिन ये जो प्रशंसा दिवस है, इसे जुलाई के अंतिम शुक्रवार को मनाया जाता है। ये अलग बात है कि आज जुलाई का आखिरी शुक्रवार 31 तारीख को है। ये दिन आईटी और कंप्यूटर सिस्टम संभालने वाले कर्मचारियों के काम को सराहने के लिए मनाया जाता है। आज का दिन राष्ट्रीय लेखक दिवस, भारत में साहित्य प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास। भारत के महान उपन्यासकार, जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद की जन्म जयंती, इसी अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय लेखक दिवस। बात करें अगर स्वतंत्रता संग्राम की, तो आज के दिन यानी कि 31 जुलाई के दिन को बेहद खास माना जाता है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया और यहाँ जीवन के कुछ नए प्रयोग किए, जैसे खेती, पशुपालन और खादी। इसी आश्रम में महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम का ताना बाना बुनना शुरू किया। गांधी जी ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया और साबरमती आश्रम सत्याग्रह और दांडी मार्च जैसे आंदोलनों का साक्षी रहा। जुलाई 1933, यही वो दिन था जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ा था, लेकिन उनकी यादों को आज भी इस आश्रम में सहेज कर रखा गया है। लौट आए स्वतंत्र भारत की दुनिया में, तो आज के दिन यानी कि 31 जुलाई को वर्ष 1995 को पहली बार मोबाइल फोन पर बात हुई थी और बात की थी पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु और केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम के बीच। सात बजकर 30 मिनट, सुन लेते हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह में बैक टू बैक एक नहीं दो गाने। आवाजें दोनों ही गीतों में मोहम्मद रफी की। पहले सुनेंगे हम फिल्म नीलाकाश से आशा भोसले को रफी साहब के साथ, राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में, और फिर रुक करेंगे लता मंगेशकर की आवाज मोहम्मद रफी के साथ। सुनेंगे फिल्म अभिमान का गीत, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत एसडी बर्मन का।

7:40। कार्यक्रम सुहानी सुबह पूजा है आपके साथ। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी कोलकाता का FM गोल्ड चैनल, जिसे आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमारे प्रोग्राम को, हमारे कार्यक्रमों को मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। बात करें अगर आज के दिन जन्मे लोगों की, पहला जिक्र आएगा प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का, जिनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई, जिन्हें शंकर के नाम से जाना जाता है, आपका जन्म हुआ था वर्ष 1902 में। प्रसिद्ध विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी का जन्म हुआ था वर्ष 1907 में। वर्ष 1916 में जन्म हुआ था मोहनलाल सुखाड़िया का। आप प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1941 में गुजरात के 8वें मुख्यमंत्री रह चुके अमर सिंह चौधरी का जन्म हुआ था। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री मुमताज का जन्म हुआ था आज के दिन, यानी कि 31 जुलाई को वर्ष 1947 में। कार्यक्रम में सुन लेते हैं अगला गीत, मुमताज पर फिल्माया हुआ।

राजेश खन्ना के साथ, आवाज मोहम्मद रफी की, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म दो रास्ते।

हसरत जयपुरी का लिखा गीत शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म झुक गया आसमान से और आवाज, वो आवाज जो हमारे दिलों में सदा सदा के लिए बस चुकी है और आने वाली पीढ़ियों के दिलों में भी राज करने को तैयार है। मोहम्मद रफी की आवाज। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे मोहम्मद रफी, जिन्होंने 31 जुलाई 1980 को कह दिया था इस फानी दुनिया को अलविदा, लेकिन उनकी आवाज आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में धड़कती है। सुनते हैं वही धड़कती हुई आवाज एक बार फिर फिल्म जंगली से। गीत के बोल हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: दिल की तो ये चाहत है कि इसी आवाज में डूबे रहें, लेकिन बंधे हैं हम समय के साथ। आज के लिए कार्यक्रम सुहानी सुबह बस यहीं तक। चलते चलते छोड़े चलूंगी आपको रफी साहब की आवाज के साथ। सुनेंगे राजकुमार फिल्म का गीत, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। सुनते रहें, साथ बने रहें, जुड़े रहें खरा सोना से। अगली मुलाकात इसी चैनल पर 11:10 पर।
1: वो देखो।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण

0: संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर दर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
4: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीब

0: तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरों मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश जोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द ही आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ हैं हमारी संवाददाता।
3: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल

0: सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
1: The reality of life is that everything has a beginning.
2: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
0: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी। अमर उजाला की सुर्खी है, अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गो में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट पासेस पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल विद स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर पेपर लीक्स। Prime Minister Narendra Modi welcomes passage of the bill, saying it will make examination system more robust. Saudi Arabia and 13 other countries announce maritime defense alliance to protect shipping in key waterways of West Asia. US President Donald Trump announces deal for complete disarmament of Hamas and other armed groups in Gaza. IMD forecasts extremely heavy rainfall in several parts of Gujarat during next 48 hours. Fishermen advise not to venture into sea till tomorrow. And weightlifter Lovpreet Singh wins silver medal at Commonwealth Games. Seema Kali Ramana bags bronze medal in discus throw.

0: কাড়া কথা আর মন মাতানো গান শুনছেন মনের মেলোডি 100.1 FM গোল্ডে। মনের মেলোডি, মনের মেলোডি।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
2: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डेटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
1: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने

कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। भारतीय जनता पार्टी की सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करते देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। सदन की कार्यवाही आज 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत किया है और कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। संयुक्त वक्तव्य में ये भी कहा गया कि सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए हैं और 10 अब भी अंदर फंसे हुए हैं। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण बताया जा रहा है। कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जोरों पर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। राज्य प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। वहीं केरलम में समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। उन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को ब्रिटिश पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को मौत के घाट उतार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को उनकी शहादत के दिन श्रद्धांजलि अर्पित की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवरीत प्रिंग सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं की हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं। आज सदन की कार्रवाई 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सऊदी अरब और

0: 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा है कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री जैन ने कहा कि आकाशवाणी ने एक विश्वसनीय सार्वजनिक प्रसारक के रूप में पहचान बनाई है। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा उधम सिंह को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: आज शिलोंग में 135वें डूरंड कप के ग्रुप ई के मुकाबलों की शुरुआत होगी। इस ग्रुप में मेघालय के तीन क्लब शिलोंग लाजोंग फुटबॉल क्लब, नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब और लैंगसनिंग फुटबॉल क्लब खेल रहे हैं। इनके साथ ही मुंबई फुटबॉल क्लब भी ग्रुप ई का हिस्सा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा आज दोपहर होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी आज शिलोंग के पोलो ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों के लिए खुली रहेंगी। अनुमिता दास, आकाशवाणी न्यूज, शिलांग।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO Dr. Jitendra Singh said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." He said that the National Education Policy 2020 has been the biggest game changer over the last decade. Moving the bill in the House, Dr. Singh reiterated the Modi government's resolve of zero tolerance towards malpractices and paper leaks of public examinations.
3: Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children. And hence, this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. If there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. This bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country.
2: Initiating the discussion, Leader of Opposition Mallikarjun Kharge said that proposed amendments will not be effective to curb malpractices in the public examinations. Prime Minister Narendra Modi has said that government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government has faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk."
4: दोनों सदनों ने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए सहमति बनने की घोषणा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए, 10 अंदर फंसे हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
1: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरो मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था

0: बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये नई सरकार फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के निकट समन्वय में काम करेगी। उन्होंने कहा कि समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द ही आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसराइल किसी भी शांति समझौते के लिए गजा पट्टी से हथियार और सेना हटाने सहित हमास की पूरी तरह की मांग करता रहा है। इसराइली सेना गजा में अपनी सैनिक गतिविधियां लगातार बढ़ाती रही है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल गजा पट्टी के 70% इलाके पर अपना नियंत्रण कायम करना चाहता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए हैं और 10 अब भी अंदर फंसे हुए हैं। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण बताया जा रहा है। कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान तेज हो गया है। पाकिस्तान के कोयला खदानों में हवा आने जाने का समुचित मार्ग न होने तथा निगरानी और सुरक्षा प्रणाली के अभाव के कारण अक्सर घातक हादसे होते रहते हैं। स्पेन के क्षेत्रीय नेता हुआन जेसुस विवास ने कहा है कि पिछले सप्ताह सैकड़ों प्रवासी मोरक्को से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एन्क्लेव क्वेटा में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे स्थानीय संसाधनों पर काफी असर पड़ा है। श्री विवास ने स्पेन सरकार से हस्तक्षेप करने तथा मानवीय और सुरक्षा आपातकाल की चेतावनी देने का आग्रह किया। स्पेन ने कहा है कि वे मोरक्को के साथ मिलकर अतिक्रमण रोकने और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को वापस भेजने के लिए काम कर रहा है। यातना और क्रूर अमानवीय व्यवहार या सजा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रैपोर्टियर एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हिरासत में उचित चिकित्सा देखभाल न मिलने की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी पसंद के अनुसार चिकित्सा जांच और उपचार की अनुमति देने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एडवर्ड्स ने बताया कि इमरान खान को 33 महीनों से एक छोटी और खिड़की रहित कोठरी में एकांत कारावास में रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। वर्ष 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान को कई आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा है। इस बीच पार्टी की संसदीय समिति ने इमरान खान की रिहाई और अन्य मांगों को लेकर 5 अगस्त से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक अपने नाम किया, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुरामन ने भी फाइनल में जगह बनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कांस्य पदक विजेता एथलीट सीमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह सफल युवा महिलाओं को खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। उधर अजरबैजान में बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता शहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल ने और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इस बीच वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का यही सही समय है।
3: The reality of life is that everything has a beginning.
4: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है।

0: मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान विकास सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
2: शहीद उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। उन्होंने 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को ब्रिटिश पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली मार दी थी। उन्हें माइकल ओ डायर की हत्या का दोषी ठहराते हुए वर्ष 1940 में आज ही के दिन फांसी दे दी गई थी। पंजाब के संगरूर जिले में उनके पैतृक स्थान नाम में उनकी स्मृति में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। गृहमंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह का जीवन धैर्य, संकल्प और देशभक्ति का अप्रतिम उदाहरण बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए सहमति बनने की घोषणा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए, 10 अंदर फंसे हुए हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सौभाग्य। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट, मोर डिटरेंट।

0: is being brought in.
1: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पोबी लालछन जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालछन जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and Union Territory Administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO Dr. Jitendra Singh said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." He said that the National Education Policy 2020 has been the biggest game-changer over the last decade. Moving the bill in the House, Dr. Singh reiterated the Modi government's resolve of zero tolerance towards malpractices and paper leaks of public examinations.
3: Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children. And hence, this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make

बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

आशा भोसले की आवाज के साथ शुरू हो चुका है कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। फिल्म लोफर का गीत सुना हमने, आनंद बख्शी के लिखे बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और दिलकश अदाओं और बेहतरीन अभिनय से हिंदी सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ने वाली मुमताज के अभिनय से सजा गीत। आज के इस कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में हमारे साथ रहेंगी हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की लोकप्रिय और सफल अभिनेत्रियों में शुमार मुमताज। 1960 और 70 के दशक में उन्होंने अपनी मनमोहक मुस्कान, चुलबुला अंदाज, सशक्त अभिनय और शानदार नृत्य से दर्शकों के दिलों पर राज किया। मुमताज ने रोमांटिक, पारिवारिक, सामाजिक और एक्शन फिल्मों में समान सफलता प्राप्त की और उस दौर के लगभग सभी बड़े अभिनेताओं के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया, खूब सराहा। कार्यक्रम

स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए बचपन से ही मुमताज ने संघर्ष का सामना किया। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने शुरू कर दिए। अभिनय के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था और यही आगे चलकर उनके सफल फिल्मी करियर की आधारशिला बनी। करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार और जूनियर आर्टिस्ट की। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे मोटे किरदार ही मिलते रहे, लेकिन बाद में कई स्टंट और एक्शन फिल्मों में अभिनेता दारा सिंह के साथ काम किया। उस समय इन फिल्मों को मुख्य धारा की फिल्मों जितनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी, लेकिन इन्हीं फिल्मों ने मुमताज को पहचान दिलाई, उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया और आगे चलकर उनकी मेहनत रंग लाई। बड़े बैनरों की फिल्मों में अवसर मिलने लगे। वर्ष 1969 में प्रदर्शित दो रास्ते उनकी पहली बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। फिल्म दो रास्ते, जिसका गीत अभी हमने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। रुक करते हैं अगले गीत का, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। सुनते हैं फिल्म खिलौना का गीत।

0: 70 का दशक मुमताज के करियर का स्वर्णिम काल माना जाता है। उन्होंने राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देवानंद, संजीव कुमार, फिरोज खान और शशि कपूर जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ सफल फिल्में की। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी विशेष रूप से बेहद लोकप्रिय रही। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ साथ काम किया। दर्शकों ने उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री को खूब सराहा। मुमताज की अभिनय शैली सहज, जीवंत, स्वाभाविक, हास्य, रोमांस, भावनात्मक और गंभीर सभी प्रकार की भूमिकाओं में समान रूप से प्रभावशाली दिखाई देती थी। राजेश खन्ना ऐसे कलाकार जो हर अभिनेत्री को सहज कर लेते थे, मुमताज भी सहज रही और इनकी जोड़ी पर्दे पर खूब जमी। बात करें अगर प्रमुख फिल्मों की तो दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, खिलौना, दुश्मन, अपना देश, तेरे मेरे सपने, लोफर, रोटी, आपकी कसम, प्रेम कहानी, चोर मचाए शोर, ब्रह्मचारी जैसी फिल्में शामिल हैं उनकी सफल फिल्मों की फेहरिस्त में। वो फिल्में जो उन्हें सफल अभिनेत्रियों की श्रेणी में उच्च पद पर रखती हैं, उनमें इन फिल्मों का जिक्र आता है। अगले गीत का रुख करने से पहले लेंगे एक छोटा सा, बेहद छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार सुनेंगे फिल्म ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को।
1: एक तो सुनून, अपना जरूरी काजर तालिका है, एही गुरुत्वपूर्ण काश्तियों रखते भूल बैठना।
2: 2025-26 अर्थ वर्षर जुन्नो, जेशब करदाता के ITR 1 बा ITR 2 फॉर्मे आयकर रिटर्न दाखिल करते हबे, तादे रिटर्न जमा देवार शेष तारीख 31 जुलाई 2026।
1: रिटर्न दाखिले आगे आपनार AIS ओ फॉर्म 26AS ভালোভাবে মিলিয়ে দেখুন। পাশাপাশি বিদেশে অর্জিত আয় এবং বিদেশে থাকা সম্পদের সঠিক সম্পূর্ণ নির্ভুল বিবরণ অবশ্যই রিটার্নে উল্লেখ করুন।
2: আপনার আয়কর রিটার্নে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদান করুন, এতে রিফান্ড দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ ও প্রদান করা সহজ হয়। রিটার্ন সঠিক হলে রিফান্ডও দ্রুত মেলে।
1: প্রত্যেক আয়কর দাতা একজন রাষ্ট্র নির্মাতা। আয়কর বিভাগ, ভারত সরকার।
3: লো আগে উনকি ইয়াদ।

बात होती है जब मुमताज पर फिल्माए गए गीतों की, तो आज भी लोग बेहद चाव से सुनते हैं फिल्म दो रास्ते आपकी कसम। रोटी फिल्म का गीत गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर। दो रास्ते से ये रेशमी जुल्फें। होली का त्योहार तो मानो आपकी कसम फिल्म का गीत जय जय शिव शंकर के बिना कुछ अधूरा सा रहता है। जी हाँ, मुमताज पर फिल्माए गए गीत आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं जितना कि उस दौर में हुआ करते थे।

मुमताज को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए। वर्ष 1971 में फिल्म खिलौना के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें अन्य कई पुरस्कारों और नामांकनों से भी सम्मानित किया गया। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को आज भी बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। सफल करियर के शिखर पर रहते हुए मुमताज ने वर्ष 1974 में उद्योगपति मयूर मधवानी से विवाह किया। विवाह के बाद वे लंदन चली गईं और फिल्मों से लगभग दूरी बना ली। उनकी दो बेटियां अभिनेत्री नताशा माधवानी का विवाह अभिनेता फरीद खान से हुआ। कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, मिल लेते हैं कांची से, नेपाल की उस चुलबुली लड़की से, अलका, माफ कीजिएगा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों के साथ।

0: जी हाँ बिल्कुल, फूल अपने साथ कांटे लेकर ही आते हैं। जीवन के एक कठिन दौर में मुमताज को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अदम्य साहस और सकारात्मक सोच के बल पर इस बीमारी को मात दी। समय समय पर सार्वजनिक कार्यक्रमों और फिल्मी आयोजनों में दिखाई देती रही मुमताज। हिंदी सिनेमा की वो चुनिंदा अभिनेत्री जिन्होंने संघर्ष से सफलता तक का प्रेरणादायक सफर तय किया। उनकी फिल्में, गीत, अभिनय आज भी दर्शकों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं जितना कि अपने समय में हुआ करते थे। फिलहाल घड़ी की सुइयां कह रही हैं आज के लिए कार्यक्रम लुआ गई, उनकी याद बस यहीं तक होगी। आपसे कल इसी चैनल पर इसी समय मुलाकात लेकर लुआ गई उनकी याद का एक और अंक किसी और कलाकार के साथ। चलते चलते आपको छोड़े चलूंगी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों के साथ। सुनते रहे ये गीत।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट

भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालछन जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालछन जोवा ने कहा कि 1966 में अपने स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: অভিযোগ খারিজ করেছে বাগদাদ। সেদেশের সরকারের মুখপাত্র হায়দার আল আবাউদি এই হামলার সঙ্গে ইরাকের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আরও একবার। নিট ইস্যুতে ছাত্র আন্দোলনের উপর পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধীদের হই হট্টগোলের জেরে আজ লোকসভার অধিবেশন বেলা 12টা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন দিনের মতো মুলতবি হয়ে গেছে। দিল্লির যন্তর মন্তরে গত 20 জুলাই ছাত্র বিক্ষোভ চলাকালীন দিল্লি পুলিশের আধিকারিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে টার্গেট করা হয়েছিল বলে আহত পুলিশ কর্মীদের পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছেন। পাঁচবারের বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল আগামী 3রা অক্টোবর যুবভারতীতে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলবে। খবর পড়া এখনকার মতো শেষ হলো। এর পরের খবর দুপুর 1:30টায়।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील

0: की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
2: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
4: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
2: झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
5: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छूरा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
2: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल छनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसटीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

के नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म

0: और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने पर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा के सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उप निरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 3 से 4 दिन तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। सरकार ने कहा है कि विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक यात्राओं के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूह के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल नवाचार मिशन के जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों के एक समूह से बातचीत की। उन्होंने एक प्रदर्शनी में उनके नवाचारों का अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी स्तर के नवाचार समाज की जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज एक सहायक उप निरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सिर में चोट आई।
2: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने आज सुबह दुर्घटना स्थल का दौरा किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन मोपे को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Both houses of parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, the presiding officer, Dilip Saikia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home Nithyananda Rai moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju criticized the opposition for not participating in the discussion. The minister said he had repeatedly appealed to the opposition, including the Congress, to ensure that such an important bill is properly discussed.
4: Parliament has been sent. The bill is to speak alone, not to create a ruckus. But you do not take part in the bill. Then you go out in the news and say that the government does not hold discussions, passes the bill without discussion. You cannot level this allegation. You have lost your chance. I just want to say this much, that the next bill that you bring, if you do such a ruckus in that too, then this will not be good at all. Therefore, cooperate. Do not create ruckus.
3: The government has clarified that the ethanol blended petrol program does not compromise India's food security and is aimed at strengthening the country's energy security, reducing dependence on imported crude oil and providing better return to farmers. Responding to recent claims regarding the use of Food Corporation of India's rice for ethanol production, the Minister of Petroleum and Natural Gas said that food security obligations are always given top priority. The ministry also clarified that damaged grain, broken rice and food grain unfit for human consumption among the feedstocks used for ethanol production, helping convert otherwise unusable stocks into clean energy. At least 9 people lost their lives after the 4-story Kohinoor building collapsed late last night in Bhiwandi town of Maharashtra. Rescue and relief operations have been conducted on a war footing by the fire brigade, police and civic authorities. State's Disaster Management Minister Girish Mahajan visited the accident site this morning and took a detailed review of the rescue operations. He announced a financial assistance of 5 lakh rupees for the families of the deceased. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the death of people in the building collapse. Prime Minister Modi has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each deceased and a financial assistance of 50,000 rupees for the injured. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over Gujarat and Madhya Maharashtra today. The weather agency has predicted heavy to very heavy rainfall conditions over parts of Arunachal Pradesh, East Rajasthan, Karnataka, Kerala, Mahe, Punjab and West Madhya Pradesh for the day. Benchmark domestic equity indices ended in a positive zone for the third consecutive session today. The Sensex rose 166 points or 0.2% to close at 78,095. The Nifty added 66 points or nearly 0.3% to settle at 24,384. At the Commonwealth Games, Indian weightlifter Lovpreet Singh won a silver medal in the men's 110 kg category, while Seema Kaliramna bagged a bronze medal in the women's discus throw at Glasgow last night. Australia continued to lead the standings with 110 medals, while India were 10th with 17 medals on day 8. India's medal count includes 3 gold, 10 silver and 4 bronze. In the women's discus throw, Seema Kaliramna clinched a bronze medal with 58.65 meters, while compatriot Nidhi Rani finished 4th. Early in the day, Neeraj Chopra qualified for the men's javelin throw finals. Javelin throwers Rohit Yadav and Yashveer Singh have also entered the finals. Prime Minister Narendra Modi today congratulated weightlifter Lovpreet Singh for winning the silver in the men's plus 110 kg event at the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. In a social media post, Mr. Modi mentioned that Lovpreet's outstanding performance in the snatch event set a new Commonwealth Games record. Prime Minister Modi also congratulated Seema Kaliramna, securing bronze medal in the women's discus throw event in Commonwealth Games 2026. And that is the end of this news bulletin. Thank you.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 5,000 मेगावाट की 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का विकास किया जाएगा। इन प्रणालियों की न्यूनतम भंडारण क्षमता 2 घंटे होगी और कुल ऊर्जा भंडारण क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना की अवधि 5 वर्ष होगी।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू

0: कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सीमा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के सैकड़ों विस्थापित लोगों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जे वाले क्षेत्र में किए जा रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन पीओजेके के विस्थापित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन SOS इंटरनेशनल ने आयोजित किया था। प्रदर्शनकारियों पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ नारे लगाते हुए पीओजेके को भारत में शामिल करने की मांग कर रहे थे। SOS इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुनी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के लोगों का दमन और शोषण कर रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरंग क्षेत्र में एक कोयला खदान में मीथेन गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। शक्तिशाली विस्फोट के कारण खदान का बड़ा हिस्सा ढह गया और कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय मीडिया ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हवाले से बताया है कि मलबे में फंसे खनिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा में पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने पर लवलीत सिंह को बधाई दी है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन मापे को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. The duration of the scheme will be of 5 years.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: The Union Cabinet also approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Addressing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सूर्य की घड़ी में समय हो गया है 5:16 का, यानी कि समय हो गया है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स का।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100

0: 101 FM गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: जी हाँ, चाय एंड क्लासिक्स प्रोग्राम का नाम, और आज मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए यहाँ।

तो आज की शाम जी, आज की शाम है उस हसीना के नाम जिनकी चुलबुली चुलबुली मुस्कान और बेमिसाल ऊर्जा और खूबसूरती ने हम सब का दिल हमेशा जीता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस गाने से।

और आज की महफिल समर्पित है हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा को जिसने अपनी चुलबुली मुस्कान, बेमिसाल ऊर्जा और सहज अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया। बात हो रही है मुमताज की, जिनका आज है जन्मदिन यानी कि 31 जुलाई को। मुमताज उन अभिनेत्रियों में रही जिन्होंने संघर्ष से शुरुआत की और फिर अपनी मेहनत के दम पर स्टारडम हासिल किया। शुरुआत में उन्हें छोटे छोटे किरदार और स्टंट फिल्मों में काम मिला और उस दौर में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़की आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिने जाएगी। धीरे धीरे उनके किस्मत बदली, निर्माता निर्देशकों की नजर उनके आत्मविश्वास और कैमरे के सामने उनकी सहज मौजूदगी पर पड़ी। फिर आया वो दौर जब मुमताज की एक के बाद एक फिल्में सुपर हिट होने लगी। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी तो जैसे सफलता की पहचान बन गई। पर्दे पर उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक लगती थी कि दर्शक हर नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते। दो रास्ते, सच्चा झूठा, अपना देश, आपकी कसम और रोटी जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को अमर बना दिया। और दिलचस्प बात क्या है पता है? दिलचस्प बात यह है कि मुमताज ने अपनी अभिनय में कभी बनावटीपन नहीं आने दिया। चाहे रोमांटिक दृश्य हो, भावुक पल हो या चुलबुला अंदाज, हर किरदार में उनकी अपनी अलग पहचान दिखाई देती है। तो चलिए अगला गाना सुन लेते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। जी हाँ, और बताइए आज की शाम चाय एंड क्लासिक्स के नाम क्या सुनाना चाहते हैं आप? करिए दिल की बातें, और रिक्वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल लाइनें खुली, और फोन नंबर आपको बता दो, फोन नंबर है 0332213131341। फिर से रिपीट कर देती हूँ, 0332213131341। फिलहाल मुमताज के बारे में बातें हो रही है, सुन लेते हैं उनकी फिल्म से अगला गाना जो कि है खिलौना से।

0: क्या है चितचोर?
1: 1, 2, 3, 4
0: क्या है चितचोर?
1: यू सिंग लाइक किशोर बट शादी का दिन
0: ओ यस September 8
1: वेरी लेट
0: डार्लिंग वेट

दोस्तों कहते हैं कि कुछ कलाकार सिर्फ अभिनय नहीं करते बल्कि अपनी व्यक्तित्व से पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। मुमताज भी उन्हीं कलाकारों में शामिल है। उनकी साड़ियों की ड्रेपिंग स्टाइल, उनका हेयर स्टाइल और उनकी मुस्कान सब कुछ उस दौर का फैशन स्टेटमेंट बन गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुमताज को उस समय कई बड़ी फिल्मों के प्रस्ताव भी मिले, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसे किरदार चुने जिसमें अभिनय की गुंजाइश हो। यही वजह है कि व्यावसायिक सफलता के साथ साथ उन्होंने आलोचकों की भी सराहना मिली। साल 1970 में आई फिल्म खिलौना उनके करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस फिल्म में उन्होंने बेहद संवेदनशील भूमिका निभाई और अपने अभिनय से ये साबित कर दिया कि वे सिर्फ ग्लैमर स्टार नहीं है बल्कि एक सशक्त अभिनेत्री भी है। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। तो चलिए वक्त है अगले गीत का, और ये गीत सुन लेते हैं हम मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

तो दोस्तों चाइल्ड क्लासिक्स में आज हम बात करें मुमताज, एक्ट्रेस मुमताज के बारे में, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन और साथ ही साथ फोन लाइंस भी खुली है 2213-1341 आपका इंतजार है। हाँ, थोड़ा सा एफएम गोल्ड के फोन नंबर पे थोड़े से बदलाव आए हैं, वापस से हम उसी फोन लाइन पे बहुत जल्द मिलेंगे, पर फिलहाल 2213-1341 पर फोन करें और बताएं आपके दिल का राज हमें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मुमताज के बारे में। तो सब बारिश के शाम का अपना ही एक जादू होता है, खिड़की पर गिरती बूंदें, हाथ में चाय का प्याला और रेडियो पर बजते पुराने गीत, ऐसा लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। यह है चाइल्ड क्लासिक्स और आज की महफिल सजी है मुमताज के नाम, एक ऐसी अदाकारा जिनकी मुस्कान आज भी पुराने दौर की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल है। कहा जाता है कि मुमताज जब कैमरे के सामने आती थी तो दृश्य में एक अलग ही ऊर्जा भर जाती। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे अभिनय नहीं करती बल्कि किरदार को जीती। शायद यही वजह है कि 5 दशक के बाद भी उनके गीत और फिल्में उतनी ही ताज़ा महसूस होती हैं। बारिश के मौसम और मुमताज, ये मेल इसलिए भी खास लगता है क्योंकि उनके कई गीतों में प्यार की वही सादगी, वही अपनापन और वही मासूम एहसास मिलता है जो बरसाती शामों और को और भी यादगार बना देता है। तो चलिए अब इसी एहसास के साथ सुनते हैं हमारा अगला गीत।

तो फिलहाल मिजोन स्ट्रीट से शोमिरोन बैनर्जी ने कॉल किया था, सुनना चाहते मोहम्मद रफी की आवाज़ में चौधरी का चांद। और भाई चौधरी का चांद सुने भी तो क्यों ना, मुमताज का जन्मदिन है भाई, उनकी सूरत याद आते ही चौधरी का चांद तो याद आता ही है। फिलहाल चलिए सुन लेते हैं उनका रिक्वेस्ट किया हुआ यह गाना।

0: तो दोस्तों मुमताज़ के बारे में बातें हो रही थी, और ऐसे में हमारे जो कॉलर हैं वो भी आ चुके हैं अगले। चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
1: मैं मोनिरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ।
0: जी मोनिरुद्दीन दा, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका चायन क्लासिक्स में।
1: बहुत अच्छा है, और आपको जो प्रोग्राम में आया इसलिए दिल गार्डन गार्डन हो गया।
0: शुक्रिया। बताइए कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है?
1: सब ठीक ठाक है, खुदा की दुआ से। शायद आपको ठीक है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
1: और 1947 आज के दिन मुमताज जी का जन्मदिन हुआ।

0: इसीलिए मैं दो लाइन बोलना चाहता हूँ मुमताज के बारे में।
1: जी बिल्कुल।
0: दिल से मुबारक, नजर से मुबारक, जुबा से भी निकले तो मुमताज जी का जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक।
1: थैंक यू सो मच, उनकी तरफ से ढेर सारा थैंक यू आपको।
0: और आपके पास है तो मुमताज और राजेश खन्ना का फिल्म है दो रास्ते से,
1: जिसमें
0: दिल से पुकारा, ये गाना
1: चलिए
0: सुना दीजिए।
1: जी चलिए ठीक है, मनोरिंदा मिलते हैं वापस आपसे। ओके बाय
0: बाय।
1: तो ये थे मुनिरुद्दीनदा और सुनना चाहते हैं मुमताज की फिल्म तो रास्ते से, गाना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के आवाज़ में। तो चलिए सुन लेते हैं हम सब भी।

दोस्तों पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। शुरुआती दिनों में मुमताज को अक्सर बी ग्रेड और स्टंट फिल्मों में काम मिलता था। उस दौर में कई लोगों को लगता था कि वे शायद कभी मुख्य धारा की बड़ी नायिका बन ही नहीं पाएंगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मेहनत, धैर्य और अपने हुनर के दम पर उन्होंने वही मुकाम हासिल किया जिसका सपना हर कलाकार देखता है। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादे मजबूत हो तो शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न हो, मंजिल बड़ी हो ही सकती है। और जब बात होशाम की तो पुराने फिल्मी गीत किसी महफिल से कम नहीं लगते। बाहर अगर हल्की फुहारें पड़ रही हो तो इन दोनों का असर दिल पे और भी गहरा हो जाता है। क्यों, है ना?

दोस्तों, मुमताज ने अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर में शादी का फैसला किया। उस समय वो लोकप्रियता के शिखर पर थी। बहुत से लोगों को लगा कि वे शायद फिल्मों में वापस आएंगे ही नहीं। बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों से लौटने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक हिंदी सिनेमा का दौर बदल चुका था। फिर भी उनकी पुरानी फिल्मों का आकर्षण कभी कम नहीं हो। यही तो एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। समय बदल जाता है, लेकिन उसके निभाए किरदार और उस पर फिल्माए गए गीत हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहते हैं। बारिश के इस शाम में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हर बूंद कोई पुराना गीत गुनगुना रही हो। जब रेडियो पर 70 के दशक की धुनें बजती है तो यादों का कारवां अपने आप चल पड़ता है। तो क्या हम जानते हैं कि मुमताज को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिल्म खिलौना के लिए मिला था। इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ चुलबुले और रोमांटिक किरदारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि गंभीर और भावनात्मक भूमिकाओं में भी उनकी उतनी ही प्रभावशाली थी। यही वजह है कि आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक हिंदी सिनेमा की उस दौर को सलाम कर रहे हैं जिसे हमने संगीत, अभिनय और संवेदनाओं का अनमोल खजाना दिया। और बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि मुमताज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहना मिली। शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार के को समय देना चुना और फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन लोकप्रियता ऐसी रही कि वर्षों बाद भी वे जब किसी कार्यक्रम में दिखाई देती तो दर्शक उसी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते। यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी कमाई भी तो होती है, क्यों है ना। फिलहाल अभी कुछ देर के लिए विदा लेने का वक्त आ गया है, तो जाते जाते दो रास्ते से विद्या चमकेगी आपके लिए और फिर मिलते हैं 6:20 पर। सुनते रहिए 100.1 FM गोल्ड है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ द फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। जो लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया है। ये नोटिस पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की गहन जांच करने और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन भीषण जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। उधर देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt.
1: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
2: The Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain. The Union Cabinet has also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for the scheme during the period of 5 years. Mr. Vaishnav said the approval reiterates the government's commitment that the prosperity of farmers forms the foundation of the nation's prosperity. The Union Cabinet has also approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, the presiding officer, Dilip Saikia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju criticized the opposition for not participating in the discussion. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh pronounced the sentence to all 5 accused after hearing arguments on the quantum. The court described the crime as a very serious incident and observed that it had shaken society. India Today said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Ranveer Jaiswal said Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said facing a violent regime, the people have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. India urged the international community to scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities. Indian boxers Preeti Pawar and Ankush Pangal have advanced to the final of their respective bouts at the 2026 Commonwealth Games. Preeti entered the women's 54kg final with a dominant unanimous 5-0 victory over Zambia's Catherine Mwape in Glasgow today. Ankush Pangal won by a unanimous 5-0 decision against Canada's Joshua Ofori in the men's 80kg semi-final. India's Unnati Hooda and Tanvi Sharma advanced to the women's single semi-final at the Taipei Open today with impressive victories in their respective quarter-finals. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गोस्वामी। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM की, जो देश में नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। वर्ष 2016 में नीति आयोग के तहत शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप्स तक एक सशक्त नवाचार तंत्र का निर्माण करना है, ताकि युवा केवल रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाले बन सके। श्रोताओं, पिछले लगभग एक दशक में अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में नवाचार की मजबूत नींव तैयार की है। अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों, नवाचार से जुड़े युवा और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिला है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को 31 मार्च 2028 तक 2750 करोड़ रुपए के बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश के नवाचार और उद्यमिता तंत्र को और अधिक व्यापक, समावेशी, तकनीक सक्षम तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। श्रोताओं, इस मिशन की बढ़ती महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ही राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में अटल इनोवेशन मिशन से जुड़े नवाचार करने वाले लोगों के साथ संवाद किया है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि अटल इनोवेशन मिशन क्या है, इसकी शुरुआत क्यों की गई, अटल इनोवेशन मिशन 1.0 की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 में कौन कौन से नए प्रावधान किए गए हैं और यह पहल विकसित भारत 2000

0: 2047 के लक्ष्य को किस प्रकार नई मजबूती प्रदान कर रही है। श्रोताओं, भारत लंबे समय से प्रतिभा और ज्ञान की भूमि रहा है, लेकिन लंबे समय तक हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना माना जाता रहा। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में यह महसूस किया गया है कि केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता, समस्या समाधान की क्षमता और उद्यमशीलता का विकास भी आवश्यक है। आइए विस्तार से जानते हैं पहली रिपोर्ट में।
1: अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य केवल स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, उद्योगों और स्थानीय समुदायों तक नवाचार की पूरी श्रृंखला को जोड़ना है। विद्यालय स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स इस मिशन की सबसे प्रमुख पहल है। इन प्रयोगशालाओं में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन थिंकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव दिया जाता है। इनका उद्देश्य बच्चों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। विद्यालयों के बाद विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन, प्रयोगशाला सुविधाएं, निवेशकों से संपर्क और व्यवसाय विकसित करने में सहयोग प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक अवसरों पर ये कह चुके हैं कि अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इंक्यूबेशन सेंटर जैसे प्रयास देश में नवाचार की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं।
2: हमने देश में इनोवेशन का माइंडसेट विकसित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया। इसके तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स और हैकेथॉन जैसा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। आज देश भर के 10,000 से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब चल रहे हैं। इनमें 75,00,000 से अधिक बच्चे आधुनिक टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं, इनोवेशन की ABCD सीख रहे हैं। देश भर में बन रही ये अटल टिंकरिंग लैब्स एक प्रकार से स्टार्टअप की नर्सरी के रूप में काम कर रही है। जब विद्यार्थी कॉलेज पहुंचे तो उसके पास जो नया आइडिया होगा उसको इंक्यूबेट करने के लिए देश में 700 से अधिक अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स तैयार हो चुके हैं।
1: वर्तमान में देश भर में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स माध्यम से लगभग 3,500 से अधिक स्टार्टअप्स को सहयोग मिला है, जिन्होंने 32,000 से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। इनमें लगभग 1,000 स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व में संचालित हो रहे हैं, जो महिला उद्यमिता को भी नई दिशा दे रहे हैं। इसी प्रकार दूर दराज और आकांक्षी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य टियर 2, टियर 3 शहरों, जनजातीय, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों तक नवाचार का लाभ पहुंचाना है। मिशन के अंतर्गत अटल न्यू इंडिया चैलेंज और ARISE कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं के समाधान विकसित करते हैं। वहीं मेंटर इंडिया द मेंटर्स ऑफ चेंज कार्यक्रम के माध्यम से 6,000 से अधिक विशेषज्ञ और उद्योग जगत के अनुभवी लोग विद्यार्थियों और नव प्रवर्तकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, अटल इनोवेशन मिशन के पहले चरण ने देश भर में नवाचार की मजबूत नींव तैयार की। अब सरकार इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन 2.0 लेकर आई है। इसके तहत केवल नए संस्थान स्थापित करने पर ही नहीं, बल्कि नवाचार को अधिक समावेशी, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं अगली रिपोर्ट में।
3: अटल इनोवेशन मिशन 2.0 का उद्देश्य केवल पहले से स्थापित संस्थानों का विस्तार करना नहीं है, बल्कि देश में नवाचार की पूरी प्रक्रिया को अधिक समावेशी, प्रभावी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके लिए मिशन को 3 प्रमुख आधारों पर तैयार किया गया है। पहला, नवाचार से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना। दूसरा, स्टार्टअप्स और नवाचारों की सफलता दर को बेहतर बनाना। और तीसरा, ऐसे उत्पादों, सेवाओं और रोजगार का सृजन करना जो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दें। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए AIM 2.0 के अंतर्गत कई नई पहल शुरू की जा रही हैं। इनमें भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम यानी लिपि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके माध्यम से भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार और उद्यमिता से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि अंग्रेज

0: अंग्रेजी भाषा की बाधा प्रतिभाशाली नव प्रवर्तकों की प्रगति में रुकावट न बने, इसके लिए देश भर के इनक्यूबेटरों में 30 वर्नाक्युलर इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार फ्रंटियर कार्यक्रम के माध्यम से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों तथा आकांक्षी जिलों और ब्लॉक में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मॉडल विकसित किए जाएंगे और 2500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन को मजबूत बनाने के लिए मानव पूंजी विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत नवाचार और उद्यमिता से जुड़े प्रबंधकों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों को तैयार किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 5500 पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड, विकसित देशों के साथ नवाचार सहयोग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के साथ साझेदारी तथा G20 स्टार्टअप 20 पहल को और सुदृढ़ बनाने की योजना है।
1: श्रोताओं, अटल इनोवेशन मिशन की सफलता केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। 12 अगस्त 2025 को आयोजित मेगा टिंकरिंग दिवस ने नवाचार के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया। देश भर के 9467 अटल टिंकरिंग लैब्स के 4,73,000 से अधिक विद्यार्थियों ने एक ही दिन स्वच्छ भारत विषय पर समाधान विकसित करते हुए स्वयं अपना वैक्यूम क्लीनर तैयार किया। इस अनूठी उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। श्रोताओं, अटल इनोवेशन मिशन आज केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत में नवाचार आधारित विकास की एक व्यापक जन भागीदारी का माध्यम बन चुका है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में नवाचार, अनुसंधान, विज्ञान और उद्यमिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में अटल इनोवेशन मिशन भारत की युवा शक्ति को नई सोच, नई तकनीक और नए अवसरों से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह। नमस्कार।

100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति परियोजना प्रस्तुति

0: 100.1 FM गोल्ड पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति में। और आज हम चर्चा करेंगे स्किल टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम की, एक ऐसी पहल जो हुनर को पहचान देने का काम करती है। यह बात सीधी है, हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो वर्षों से किसी काम में निपुण हैं, लेकिन उनके पास उस कौशल का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं। इसी जरूरत को समझते हुए 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू हुई, जिसमें स्किल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की व्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई। इस योजना का सबसे अहम हिस्सा है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL। इसका मतलब है अगर आप पहले से किसी कार्य में दक्ष हैं तो आप सीधे अपना स्किल टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है। यदि उम्मीदवार तय मानकों पर खरा उतरा तो उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल और सुनिश्चित करती है कि हर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय मानक तय हो और परीक्षण उसी के अनुसार हो। अब बात करते हैं इसके लाभों की। प्रमाणित कौशल से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उद्योगों को प्रशिक्षित और मानकीकृत कार्यबल मिलता है, श्रमिकों का आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान बढ़ता है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। तो दोस्तों परियोजना प्रस्तुति में आज ये निष्कर्ष है कि हुनर तभी आगे बढ़ता है जब उसे पहचान मिलती है। स्किल टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम उसी पहचान की दिशा में एक मजबूत कदम है।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।
0: तो दोस्तों चाय एंड क्लासिक्स का आज का अंक बस यही। पुराने गीत दोस्तों सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, वे जिंदगी के अलग अलग रंगों को भी संजोए रखते हैं। इनमें प्यार है, अपनापन है, उम्मीद है और वो सादगी है जिसकी खुशबू समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। मुमताज की मुस्कान, उनकी सादगी और उसका आत्मविश्वास आज भी नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा है। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में उसका नाम हमेशा बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। और अब विदा लेने से पहले आज की शाम का आखिरी नगमा एक ऐसा गीत जो आज भी महफिलों की रौनक है और जिसकी धुन सुनते ही दिल अनायास ही गुनगुनाने लगता है। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए ये गाना। और मैं हूँ पापिया, आप सुन रहे थे चाय एंड क्लासिक्स। पर मिलेंगे एक नई शाम नई कहानियों और पुराने दौर के अनमोल नगमों के साथ कल। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। अगर शहर में भी बारिश हो रही है तो एक प्याली गर्म चाय ज़रूर इन यादों के साथ पी लीजिए। मैं वापस मिलती हूँ आपसे और फिर 7 बजे छायालोक में वापस मुलाकात तो होगी। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन। सेंसेक्स गेन्स ओवर 150 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट अराउंड 24,400। In Asian stock market indices, South Korea's Kospi jumps nearly 18%. And Cabinet approves Samudra Manthan offshore exploration scheme for strengthening India's energy security.
1: घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 150 अंकों से अधिक की तेजी आई। निफ्टी 24,400 के स्तर के आसपास पहुंचा। एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 18% का उछाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को स्वीकृति प्रदान की।

0: And before we take the top story of the day, an important announcement for the listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं खबरों के साथ में। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 166 अंक यानी 0.2% ऊपर चढ़कर 78,095 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 66 अंक यानी 0.3% की तेजी के साथ 24,384 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में आज 0.4% का उछाल आया। इससे पहले बाजार आज मजबूती के साथ खुले और दिन के पहले हिस्से में सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, लेकिन दोपहर के सत्र में दोनों सूचकांकों में

0: तेजी देखी गई।
1: Benchmark domestic equity indices ended in positive zone for the third consecutive session today. The Sensex rose 166 points or 0.2% to close at 78,095. The Nifty added 66 points or nearly 0.3% to settle at 24,384. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index as well as the Small-Cap 100 Index gained over 0.4%. Earlier, markets opened on a firm note and traded in a narrow range during the first half before gaining momentum during the afternoon session.
0: सेंसेक्स की 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों पर नजर डालें तो बजाज फाइनेंस में 8.1% से ज्यादा, बजाज फिनसर्व में 6.6% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.6% की तेजी आई। वहीं दूसरी तरफ टीसीएस और एटर्नल में लगभग 2.7% की गिरावट देखी गई। इन्फोसिस लगभग 2.3% नीचे आ गया और आईटीसी में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई।
1: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 19 आउट ऑफ 27 सेक्टर्स एंडेड इन पॉजिटिव जोन। अमंग द टॉप गेनर्स ऑटो एडवांस्ड 2%, कैपिटल गुड्स रोज 1.8% एंड इंडस्ट्रियल्स गेन्ड 1.3%। इन कॉन्ट्रास्ट आईटी लॉस्ट 1.4%, Focused IT slipped 1.2% and FMCG fell 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,568 companies advanced, shares of 1,653 companies declined and shares of 204 companies remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 29 पैसे मजबूत हुआ और 95.39 रुपये पर बंद हुआ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज के मार्केट पर अगर नजर डालें तो तीसरा लगातार दिन था जब बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ और इस पूरे महीने का ये आखिरी कारोबारी दिन था, इस हफ्ते का भी आखिरी कारोबारी दिन था। पिछले हफ्ते को देखें तो काफ़ी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस सप्ताह जो हम थोड़ी सी तेज़ी देख रहे हैं मार्केट में, तो इसे FIS की बढ़त मानते हैं या DIS की बढ़त मानते हैं या और भी कोई कारण रहा जिसकी वजह से ये लगातार चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं?
2: देखिए, कई महत्वपूर्ण पहलू हैं निखिल, और FIIs का जो रोल रहा है इसमें वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस पर हम इस कार्यक्रम में कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए, FIIs जब ज़्यादा निवेश करती हैं या जो FIIs हैं वो जब अपना पैसा निकालती हैं तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है ना। ही तो जब वो पैसा बाजार से अपना हटा रही हैं तो ये इस बात का परिचायक बिल्कुल नहीं है कि अब तो सब बिल्कुल ख़राब है। और अगर FIIs पैसा वापस लेके आ रही हैं तो वो पहले वाले सिनेरियो के बनिस्बत जो है यहाँ थोड़ा सा वो प्रोत्साहन दिखाई देता है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास अपार संभावनाएँ हैं, उनकी नज़रें दुनिया भर के बाजारों पर हैं, और अगर उनको और उनका मार्जिन बहुत कम है
0: जी।
2: तो अगर उनको लगता है कि भारत के बाजार से हटके किसी और बाजार में उनको शायद 0.5% या 0.2% अगर फायदा शॉर्ट टर्म में हो सकता है तो वो उस फायदे की ओर जाएंगे। लेकिन FIIs का जो वापसी है, और खासतौर पर पिछले 3 दिन से, और बृहस्पतिवार के आंकड़े शायद आपने दिए होंगे, लगभग 3,600 करोड़ के आसपास FIIs की इन्वेस्टमेंट है, जिसे एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कहा जा सकता है, और वो दर्शाता है कि बाजार की जो स्थिति है वो केवल ये एक या दो दिन के लिए नहीं थी, ये एक सस्टेन्ड रैली थी जो कि अब बनी हुई है। हालांकि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि हम अगर आईटी सेक्टर की तरफ नजर डालें तो उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन उसका भी एक कारण है। वो कारण ये है कि उसमें जो रैली बनी थी बाजार में, ओवरऑल जो पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा था उससे पहले ही पॉजिटिव सेंटिमेंट वो आईटी सेक्टर में दिखना शुरू हो गया था, और आज आईटी सेक्टर में बिकवाली का दौर रहा, बिकवाली का दिन रहा, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें गिरावट जरूर देखने को मिली। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर कहा जा सकता है। दूसरा, रुपए की जो स्थिति है, यानी कि भारतीय रुपया जो है उसकी स्थिति में जो सुधार लगातार धीरे धीरे धीरे धीरे होता दिखाई दिया, उससे भी बाजार में और बाजार के निवेशकों में एक जिसे कहा जाए थोड़ा सा हौसला उनका बढ़ा है। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो मैं कहूँगा, हालांकि एक नज़रिया इसका ये भी हो सकता है कि वो थोड़ी सी कम वॉलेटाइल है, मैं कहूँगा थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल है। तो गिलास आधा भरा है या आधा खाली है उसी नज़रिए से देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में उतार चढ़ाव देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में, खासतौर पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी चल रही है उसके चलते, उसके मुकाबले देखा जाए तो मुझे लगता है

0: things as well, but we're being cautious as well. That's one. And by we, I mean the investors.
1: Yes. Yeah. So actually, it's very interesting because since you're saying that we are taking a very balanced approach so far as AI is concerned, which means we are again not exposed as much as the other markets to all these ups and downs and volatility that we keep seeing in the AI stocks, you know, in the other economies. Because like you said, since ours is a very balanced approach, we're taking our time, we are not that affected like the way Kospi, we have seen Kospi in the last few days or yes. This month.
0: Yes, but there is a word of caution here, Anuman, that caution is that, you know, this is not likely to remain so for long because, as I said earlier, the nature of this industry is such that it will change very quickly. You know, those who are still experimenting with it will have to adapt, will have to expose more. And of course, you know, they will reap benefits also. But in the process, there will be some tailwinds which will have to be taken care of.
2: Vishal, abhi thode pehle geopolitical baat kar rahe the, crude oil ki hum baat kar rahe the. Agar thoda sa niche agar dekhe, mid cap aur small cap ki baat karte hain, ek उछाल हमें देखने को मिल रहा है. हालांकि पिछले दिनों वो चीज़ नहीं देखने को मिली थी. अभी आपको लगता है कि जो एक सस्टेन सी चीज़ हो रही है पॉजिटिव इसे बनाने के लिए, वो उसका असर हमारे घरेलू निवेशकों का है या जो बाहर के जितने भी कारण उनका असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है?
0: देखिए, ये आप एक बार फिर से निखिल, मिक्स एंड मैच अप्रोच रहती है क्योंकि जो घरेलू कारण है जिन्हें हम घरेलू फैक्टर्स बोलते हैं,
2: मॉनसून का इसमें कितना रोल
0: है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ. डोमेस्टिक फैक्टर्स जिनको बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि सीजन क्या है, यानी कि मौसम क्या है. सीजन मॉनसून का है और मॉनसून की गति जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं थी, तो उसका असर थोड़ा सा जरूर देखने को मिलता है. लेकिन दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि किसी भी सेक्टर को लेकर जो पॉलिसीज हैं उनकी कंसिस्टेंसी क्या है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, यानी कि वो कंसिस्टेंट है. तीसरा होता है कि जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो कैसा है, चाहे वो हम स्मॉल कैप की बात करें या मिड कैप की बात करें. लेकिन उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल फैक्टर्स का भी है क्योंकि उनका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ता है, सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग की जो सप्लाई चेन है उस पर भी पड़ता है, एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन पे भी पड़ता है. तो वो उसका असर जरूर देखने को मिलता है. बड़ी कंपनियों का डेटा देखें तो शायद वो पहले दिन देख के लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा असर. छोटी कंपनियां जब स्मॉल कैप मिड कैप की बात करते हैं तो उन पे भी असर पड़ता है. वो आंकड़े छोटे जरूर हो सकते हैं लेकिन असर उतना ही है.
2: जी, टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणाम जारी किए हैं. संचालन गतिविधियों से कंपनी का सकल राजस्व वर्ष दर वर्ष 14% से अधिक बढ़कर 60,794 करोड़ रुपए रहा. वहीं कंपनी का सकल लाभ वार्षिक आधार पर 12% की तेजी के साथ 2,318 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है.
1: Some more quarter one results now. Bajaj Finserv Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose over 19% year on year to 42,037 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners increased around 12% to 3,132 crore rupees on an annual basis. ITC Limited also reported its financial results today. The company's consolidated revenue from operations rose around 28% year on year to 29,523 crore rupees. The firm's consolidated net profit for this quarter attributable to the owners fell over 16% to 4,394 crore rupees on an annual basis. Maruti Suzuki India Limited reported its financial years for the first quarter of the current fiscal. The company's consolidated revenue from operations rose around 36% year on year to 52,469 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners fell over 9% to around 3,447 crore rupees on an annual basis. And let's also have a quick look at the results for Sun Pharmaceutical Industries Limited. The company's consolidated revenue from operations rose around 10.5% year on year to 15,300 crore rupees. Its consolidated net profit increased 27% to around 2,895 crore rupees on an annual basis.
2: और अब एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो एशियाई शेयर बाजारों में आज चिप स्टॉक्स में फिर से खरीदारी देखने को मिली. इसी वजह से दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 17.9% ऊपर पहुंच गया. ये ऐसा मौका था जिसने पिछले तीन दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया. ताइवान के ताइएक्स में आज 8% का उछाल देखा गया और जापान के निक्केई 225 में 4% की बढ़त दर्ज हुई. इस बीच बैंक ऑफ जापान ने अपनी पॉलिसी रेट को

0: प्रतिशत पर ही बनाए रखा है। हालांकि अपने बयान में बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से कोर महंगाई दर के 2% से ऊपर जाने की संभावना है। यूरोप के शेयर बाजार की बात करें तो प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.3% के लाभ में था और लंदन का फुटसी 100 0.2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। वहीं यूरो क्षेत्र में सालाना महंगाई दर इस साल जुलाई में थोड़ी बढ़कर 2.9% हो गई है, जो जून में 2.8% थी। यूरोस्टेट के शुरुआती अनुमान के अनुसार सालाना आधार पर ऊर्जा कीमतों में 10% की बढ़ोतरी हुई, जबकि जून में ये 8.5% थी। विशाल जी, मेरे दो प्रश्न है आपसे। पहला प्रश्न तो यही, कॉस्पी की भी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक बड़ा उछाल देखने को मिला है, कई दिनों से लंबा लंबा उतार चढ़ाव इनमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से बैंक ऑफ जापान तमाम स्थितियों को टैकल करने की कोशिश कर रहा है, तो इनकी अप्रोच से आपको क्या लगता है, किस तरह की अप्रोच ये रख रहे हैं?
1: देखिए, ये जो बाजार है, खासतौर पर कॉस्पी और निकेई की अगर हम बात करें, तो दोनों में जिस तरह की वॉलिटिलिटी पिछले लगभग कई हफ्तों से लगातार देखने को मिल रही थी, तो ये उम्मीद जरूर की जा रही थी खासतौर पर जापानी सेंट्रल बैंक से कि वो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन जरूर करेगा। क्योंकि ये आप थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाके देखें तो हमेशा ये एक स्ट्रक्चर भी रही है कि जब बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी निकेई में देखने को मिलती है तो जापानी सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन मैं बड़ी जल्दी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक कॉशन अप्रोच के साथ जरूर होता है, तो वो हमें देखने को मिला है। और वो उसकी जरूरत भी थी क्योंकि ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ड्राइव कर रहे हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी ड्राइव कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उस रीजन के लिहाज से भी है, तो वो भी उसका क्या नजरिया रहेगा। जहां तक कॉस्पी की बात है, तो कॉस्पी में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला उसके लिए मैं ज्यादातर अगर एनालाइज करके देखा जाए तो जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं उन्हीं की तरफ नज़र जरूर जाती है। अब आज जो मोटे तौर पर जो चढ़ाव जो बाजार में जो बढ़ोतरी देखने को मिली वो केवल जो टेक स्टॉक्स हैं, खास तौर पे सैमसंग या फिर और जो दो तीन बड़े कंपनियां हैं वहाँ पर, उनमें उनका जो प्रदर्शन रहा उस प्रदर्शन के बनिस्पत उसकी बदौलत देखने को मिली। और अगर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दोनों बाजारों पर नज़र रखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहां से एक नजरिया आपको मिलता है कि बाकी जो एशियाई बाजार हैं भारत के नजरिए से देखें तो वहां क्या हालात चल रहे हैं। और जो जिन हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करते हैं वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करने को मिलता है कि क्या हम ही पे उसका असर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या कहीं और भी हो रहा है।
2: जी, लेट्स मूव ऑन टू यूएस मार्केट्स। मेजर यूएस इंडिसेस रैलीड यस्टरडे लेड बाय गेन्स इन चिप स्टॉक्स। द नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स जंप्ड 2.8% एंडिंग अ 6-डे लूजिंग स्ट्रीक। द S&P 500 रोज almost 1.7% and the Dow Jones Industrial Average settled 1.2% higher. Meanwhile, the U.S. economy grew at a slower pace in the second quarter of this year, according to the advance estimate released by the U.S. Bureau of Economic Analysis, BEA. Real gross domestic product increased at an annual rate of 1.5%, down from 2.1% in the first quarter. A separate report by the BEA showed that personal consumption expenditures, or the PCE price index, rose 3.7% in June on an annual basis, easing from a 4.1% increase in May. On a monthly basis, it contracted by 0.1% from a rise of 0.5% in May. Vishal, a very quick comment on you from on the U.S. market. So we have discussed it a little bit earlier on.
1: Well, as far as, bond yields specifically, we're looking at, because we've spoken about U.S. markets.
2: Yes.
1: So if you're looking at the bond yields part here, let's try and understand, bond yields do signify how a country's economy is working, what actually is happening within that country's economy. Now, if the yields rise, then the situation is not very hunky-dory. I'm not saying it's very bad, because if the economic situation is really bad, then the yields will not rise, they will fall. But if, because the investors would want to go to the safety of the bonds, but the investors do keep a watch on what's happening as far as inflation rates are concerned, as far as the central bank rates are concerned. Now, recently, the Fed has given an indication that there is a possibility of at least 25 basis point hike in September. Now, that is something which is pushing this, increase in the yields. Secondly, is the inflation data. The inflation data in the United States is a cause of concern for a very long time now. And that is another big contributor to the data which we see in 30-year bond yields or 10-year bond yields. Even the short-term, 2-year bond yields, we've seen a significant increase. So that is how it is working. And we get a clear picture of what is happening in the market, in the country's economy, rather, if you just look at

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला के कार्यक्रमों का एक व्यापक समूह समाहित करती है।
1: एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, एक है डेटा एक्विजिशन, सीज़मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है, उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज है, सीज़मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड, देन यू कैन स्टार्ट ड्रिलिंग द होल्स एंड देन यू get the actual data whether there is oil or gas available in that particular point or not.
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। विशाल, दो बड़ी योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं, इसमें आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा। सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना के लिए तमाम तरह के उपकरणों की जरूरत होती जिसका विनिर्माण भारत में थोड़ा सा भी कम होता है, अब उनको बढ़ावा बहुत दिया जा रहा है, इससे मार्केट को कितना लाभ होने की संभावना है?
2: देखिए, जो हम थोड़ी देर पहले एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे थे, सीधे तौर पर इसका बेनिफिट उसे मिलने वाला क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में एक एक एक नया जिसे कहा जाए ऑप्शन रहेगा बढ़ोतरी के लिए, बढ़ावे के लिए, और इसका स्केल जो है इस स्कीम का वो कोई बहुत छोटा नहीं है। दूसरा, जो आपने समुद्र मंथन योजना की बात की, मैं उस पर जरूर दो सेंटेंस बोलना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर जो पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से चल रही है, हमारा देश लगभग 80-85% के आसपास अपनी जो क्रूड ऑयल जो है, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो एक्सप्लोरेशन स्कीम है उसके चलते हम अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे, और इस तरह की जब अगर झटका अगर आगे कहीं देखने को मिले तो उससे हम बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। और लगभग मैं ONGC की वेबसाइट पर भी अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, लगभग 2-2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है से एक्सप्लोर किया जाएगा, यानी कि एक वृद्ध स्तर पर ये एक एक, एक कोशिश है कि जिसे हम सेल्फ रिलायंस इन ऑयल प्रोडक्शन की तरफ, जो हमारे कदम है पेट्रोलियम प्रोडक्शन की तरफ, उसमें इसमें बढ़ोतरी मिलेगी।
0: जी। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ही ब्याज देय होगा।
3: Commodity prices. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 1.4% up at $90.25 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.6% up at $85.77 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading 0.4% down at 1,43,500 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.1% down at 2,17,930 rupees per kilogram a short while ago.
0: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना आज 1% की गिरावट के साथ 1,41,869 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.2% गिरकर 2,17,309 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। विशाल, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से क्रूड ऑयल मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा और गिरावट ज्यादा देखने को मिली, बढ़त उतनी शायद हमें देखने को नहीं मिली, और दूसरी तरफ जो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट का सिलसिला बदस्तूर जारी जिसे कह सकते हैं, दोनों पर क्या कहेंगे आप?
2: देखिए, मैं तो ये यही कहूंगा कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा और कम नीचे हो तो उसका सीधा फायदा हमको मिलेगा, और जहां तक सोने और चांदी की बात है तो ये तू डाल डाल मैं पात पात का रिश्ता है सोने चांदी का जो है क्रूड ऑयल के साथ या इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती है उसके साथ, तो देखते हैं अब किसको ज्यादा फायदा मिलता है। क्रूड ऑयल स्टेबल रहेगा तो आम जनता को सीधे तौर पर फायदा है, और सोने चांदी की चमक तो सब लोग देखना चाहते हैं।
3: जी विशाल, वी आर टॉकिंग ऑफ कोर्स अबाउट द कमोडिटी प्राइसेस, बट आई वांट टू यू नो कनेक्टेड टू अनदर थिंग। वी हैव द आरबीआईज मंथली पॉलिसी मीटिंग कमिंग अप नेक्स्ट वीक, फ्रॉम मंडे इट विल बी देयर, सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट मीटिंग?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। और मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन हत्याओं की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया है। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रिड XWG डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन चरम जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले इलाकों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ब्याज देय होगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मापे को हराया। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours totaling 10,000 megawatts.
1: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है. वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज. 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में. टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी. 5 साल की स्कीम है. 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में. प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग. 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा.
2: The Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme for 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees have been approved for the scheme during the period of 5 years. Mr. Vaishnav said the approval reiterates the government's commitment that the prosperity of farmers forms the foundation of the nation's prosperity. The Union Cabinet has also approved an expanded Khelo India scheme and enhance assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest of the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, the presiding officer, Dilip Saikia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nithyananda Rai, moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju criticized the opposition for not participating in the discussion. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh pronounced the sentence to all 5 accused after hearing arguments on the quantum. The court described the crime as a very serious incident and observed that it had shaken society. India Today said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said, facing a violent regime, the people have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. India urged the international community to scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities. Indian boxers Priti Pawar and Ankush Fangal have advanced to the final of the respective bouts at the 2026 Commonwealth Games. Priti entered the women's 54-kilogram final with a dominant unanimous 5-0 victory over Zambia's Catherine Moape in Glasgow today. Ankush Fangal won by a unanimous 5-0 decision against Canada's Joshua Ofori in the men's 80-kilogram semi-final. And that is the end of this news bulletin.

0: एक्सेस जियोग्राफी कनाडा जो इसके अलावा चौधरी ने सब हार करके फाइनल जब
1: The youth cabinet over Yojana for the project addressing need in the Union Cabinet meeting to be Minister version of said has been approved.
2: सोलर पावर जनरेशन क्रिएट करना वो लिया गया 102 गीगावाट 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी मतलब 5 मेगावाट फोटिंग कैपेसिटी में क्रिएट की जाएगी

0: কিন্তু সেটা যদি না থাকে সময় লাগবে, পৌঁছতে তো হবেই, ছোট্ট ছোট্ট পায় নাকি, ঠিক পৌঁছে যাব।
1: এদিকে টুকটুক করে ঘড়িও কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে, দেখতে দেখতে সময়ও প্রায় শেষ, একদম শেষের দিকেই বলা যায় আমাদের আজকের আপনার কথার।
0: আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, আশিস জানা লিখছেন বারুইপুর থেকে, কিন্তু আশিস বাবু আপনার মেসেজটা কোনোভাবে আমাদের কাছে আসেনি, পৌঁছয়নি, যার জন্য আমরা পড়তে পারলাম না, নাহলে নিশ্চিত রূপেই পড়তে পারতাম।
1: কিন্তু কোনোভাবে আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি, মানে আমাদের যে ফোন হাতে রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে,
0: তাতে আমি কিন্তু সত্যিই দেখতে পাচ্ছি না,
1: পর্যন্ত কিন্তু সত্যিই পাচ্ছি না,
0: জানি না স্টুডিও থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে হয়তো দেখলেও দেখতে পারি। আর এটা সত্যি দুঃখিত, মানে আপনি যদি এই কথাটা যেখানে লিখেছিলেন সেখানে একবার পেয়ে যেতাম,
1: আরেকবার যদি লিখতেন
0: বেটার হতো, সেক্ষেত্রে নেক্সট টাইম নিশ্চয়ই, খারাপ লাগছে আর দুঃখিত কিন্তু। হ্যাঁ, ঝুমুর আর সুদীপ্ত ছিলাম আপনাদের সঙ্গে আপনার কথা নিয়ে।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
4: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
3: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
4: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
3: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
4: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
3: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभा

0: प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतरदेशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली

0: गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों लिए जवाबदेह ठहरा जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य

0: पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advance to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है। 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain.
2: एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े। एक है डेटा एक्विजिशन, सीज़मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज है, सीज़मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड देन यू कैन स्टार्ट ड्रिलिंग द होल्स एंड देन यू get the actual data whether there is oil or gas available in that particular point or not.
1: The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
1: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
2: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer, Dilip Sekia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, removed the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan today. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation talks for the 13th five-year plan of Bhutan. During the 5th plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India's support of 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th five-year plan. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional sessions judge Praveen Singh pronounced the sentence to all 5 accused after hearing arguments on the quantum. In Jammu and Kashmir, one non-local labourer was killed and another injured in a terrorist attack in the Kilam Devsar area of Kulgam district this evening. Speaking to Akashwani News, IGP Kashmir V.K. Birdi said one labourer died while the other is undergoing treatment at a local hospital after unidentified terrorists opened fire on the duo. The IGP said the area has been cordoned off and a search operation has been launched to trace the terrorists. Meanwhile, Lieutenant Governor Manoj Sinha has strongly condemned the attack and issued directions to the security forces to step up operations. Flood crisis has deepened in Odisha as the Mahanadi and its tributaries continue to swell following incessant rainfall in the upper catchment areas. 15 districts have been affected, with vast stretches of villages, roads and agricultural land remaining inundated. Authorities have stepped up rescue and relief operations amid warnings of further flooding in downstream districts. Indian judoka Asmita Day and Harsh Singh created history by winning judo gold medals for the first time in Commonwealth Games today. Asmita Day clinched country's first ever Commonwealth Games judo gold, defeating Canada's Heidi Quach 2-1 in the women's 48kg final. Following closely, Harsh Singh kept India's golden momentum alive. He clinched the men's 60kg title, defeating Australia's Joshua Cartes in the final. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated Asmita Day and Harsh Singh on their gold medal victories. And that is the end of this news bulletin.
3: কানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড, 100.1 FM গোল্ড।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से अभद्र भाषा और नफरत से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि गाली गलौज से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर की हाल की घटना को लेकर करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी सभ्य समाज के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी दिवंगत माता के बारे

0: में भी अपशब्द कहे गए, लेकिन बचपन में गलती होना स्वाभाविक है और उसे सुधारने का अवसर भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगमपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाइयां की जा रही हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। भारत अध्यक्ष देश के रूप में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा कटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। उज्बेकिस्तान के बाकू में जारी अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या विश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए। वहीं अवंशिका और तानिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में पुरुष फ्रीस्टाइल मुकाबले आज से शुरू होंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात के में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरल, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है.